देसी डांस पार्टी फ्राइडे एंड सैटरडे नाइट्स फ्रॉम 8 ऑन SBS साउथ एशियन।

0: SBS Telugu. Listen anytime on the SBS audio app.
1: Pushpa.

पापुष पापुष पापुष पापुष।

मेरी एक बात सुन, पास मेरे आ और लड़की तू चुन, कुंडली मिला देंगे, लाइफ बना देंगे, देर ना लगा बजा दे शादी की तू धुन। माता कौन देखता है गुन, जल्दी करो यहाँ रख दो शगुन।

0: बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।
1: बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम का शाम।
2: SBS South Asian।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online, और radio पर.
2: शनिवार 2 मई 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार। सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं। SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वरंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज शनिवार का दिन है तो बस हमेशा की तरह आपके लिए होंगे बॉलीवुड की खबरें, कुछ गाने, कुछ और बातें और साथ में आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक मेहमान भी। कौन है वो, उनके साथ आपको आगे परिचय करवाती हूँ। उनका अभी न्यूज फ्लैश। नमस्कार, शनिवार 2 मई के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूँ अनीता बरार। चेतावनी, एबरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर रीडर्स को सलाह है कि इस समाचार में एक इंडिजिनस व्यक्ति का नाम और फोटो शामिल है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। एलिस स्प्रिंग में 5 साल के कुमुंजई लिटिल बेबी के लिए श्रद्धांजलि दी गई। अधिकारियों का कहना है कि बच्ची को किडनैप करने और उसकी हत्या के आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद अब शांति बहाल हो गई है। 47 साल के संदिग्ध को गुरुवार को गिरफ्तारी के बाद गुस्साई भीड़ द्वारा हमला करने और एलिस स्प्रिंग हॉस्पिटल में घुसने की कोशिश करने के बाद एयरलिफ्ट करके डार्विन ले जाया गया। ऊर्जा मंत्री क्रिस बॉविन का कहना है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के पास अब अधिक पेट्रोल मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 56 जहाज फ्यूल लेकर आ रहे हैं। बॉविन सिडनी में वीकली फ्यूल सप्लाई अपडेट दे रहे थे। एक ट्रक ड्राइवर का कहना है कि फ्यूल की बढ़ती कीमतें ट्रकिंग इंडस्ट्री के लोगों को मुश्किल में डाल रही हैं। शार्ना चैपमैन विक्टोरियन इचुका से 4 ट्रक का बिजनेस चलाती हैं और वो कहती हैं कि इंडस्ट्री को बहुत अधिक फ्यूल बिलों से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने एबीसी को बताया कि फ्यूल का संकट कोविड-19 महामारी के पीक के दौरान उनके सामने आए दबावों से कहीं अधिक मुश्किल है। मेलबर्न पुलिस ने डॉकलैंड के एक रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है 16, 19 और 22 साल के लड़कों ने रेस्टोरेंट में आग लगाने से पहले कांच के दरवाजे तोड़ दिए और उसमें एक्सेलरेंट डाल दिया। उनका आरोप है कि संदिग्धों को तब रोका गया जब चोरी की गाड़ी में भागने की कोशिश कर रहे थे। कार के अंदर जेरी कैन मिले। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टास्क फोर्स जांच कर रही है कि क्या ये मामला इसी तरह की दूसरी घटनाओं से जुड़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स अगले साल जर्मनी से करीब 5,000 सैनिक वापस बुलाएगा। पेंटागन की यह घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ अनबन के बाद अपने नेटो सहयोगी से सैनिक हटाने की धमकी के बाद आई है। इस हफ्ते की शुरुआत में मर्ज ने कहा था कि ईरान के साथ शांति बातचीत में यूएस की बेइज्जती हो रही है। जर्मनी में करीब 36,000 एक्टिव ड्यूटी यूएस सैनिक हैं। विक्टोरिया के मॉर्निंगटन पेनिनसुला में नेपियन सीट पर आज हो रहे उपचुनाव पर पॉलिन हैंसन की वन नेशन के लिए बढ़ते सपोर्ट के लिटमस टेस्ट के तौर पर करीब से नज़र रखी जा रही है। ये एक कड़ा मुकाबला हो सकता है। ये उपचुनाव डेप्यूटी स्टेट लिबरल लीडर सैम ग्रॉथ के अचानक त्यागपत्र देने की वजह से हुआ। और एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार भारत पश्चिम बंगाल में आज दक्षिण 24 परगना जिले की डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिमी विधानसभा सीटों की 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है। बीजेपी ने इन बूथ्स पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान कराने का फैसला किया। दूसरी ओर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में केवल केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। और श्रोताओं, न्यूज फ्लैश के बाद अब बात है सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टूडियो में आज हमारे साथ कौन मौजूद हैं, तो उनसे आपका परिचय करवाती हूँ इसके बाद में। तो आइए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया ऐप की जो बात आपको पता ही है कि 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तो प्रतिबंधित है। ऐसे में अभी ई सेफ्टी कमिश्नर ने पाया है कि सोशल मीडिया कंपनियाँ निगरानी में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं। तो क्या है ये कमियां और क्या इन कंपनियों पर जुर्माना लग सकता है? वैसे आपको ये भी बताती चलूं कि इस अंश को आप पहले भी सुन सके हैं, लेकिन याद दिला रहे हैं हम फिर से इसी मुद्दे को। तो ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत कर रही हैं वृषाली जैन।
3: ऑस्ट्रेलिया की ई सेफ्टी कमिश्नर का कहना है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंध का पालन करने में विफल होने की आशंका के चलते 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जांच की जा रही है। 10 दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया पर रोक लागू कर दी गई थी। जो कंपनियां इसका पालन करने के लिए उचित कदम नहीं उठाती हैं, उन्हें $49.5 मिलियन तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और अब आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को विस्तार से। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और यूट्यूब, इन सभी प्लेटफॉर्म्स की जांच की जा रही है, क्योंकि इनके द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के अकाउंट्स पर निगरानी रखने के नियमों के उल्लंघन की आशंका की गई है। ई सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट का कहना है कि उनका कार्यालय 10 दिसंबर 2025 से इस प्रतिबंध के पालन की निगरानी कर रहा है।
4: We're assessing what they've done and where they're falling short. And I want to reassure you, if a platform has not taken the reasonable steps they need to comply, we will take action. That's our role. And we're committed to it.
3: एक अनुपालन रिपोर्ट में उनके कार्यालय ने कहा है कि पहले 3 महीनों में कुछ प्रगति हुई है, जिसमें बड़े पैमाने पर अकाउंटों को हटाना और कम उम्र के उपयोगकर्ताओं की रिपोर्टिंग के लिए अधिक स्पष्ट रास्ते शामिल हैं, लेकिन अभी भी बड़े स्तर पर कमियां पाई गई हैं। संचार मंत्री अनिका वेल्स ने चैनल 7 से कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बेहतर काम करना होगा, वरना उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
5: It is not good enough for big tech to offer kids multiple attempts to get in through photo scanning. It's not good enough for big tech to say, do you want to check your age ahead of 10 December coming in? And the biggest reason that kids haven't been thrown off social media platforms, as you see in the compliance report, is because big tech hasn't even asked their age to begin with.
3: मेलबर्न की लाट्रोब यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ग्लेन होस्किंग का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक वास्तविक खतरे को पैदा तो कर रहे हैं।
6: Very addictive. So these platforms have algorithms that encourage everyone to stay on for as long as possible, and that this can be incredibly addictive. Together with that, they're always accessible. And so what we often find is that if someone, you know, is having a moment of inattention or a moment where they are looking for some sort of distraction, it's there, it's accessible, and that can cause a whole lot of challenges and problems.
3: डॉक्टर होस्किंग का कहना है कि जब लोग भावनात्मक रूप से कठिन या दर्दनाक स्थितियों से बचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, तो इससे लत विकसित हो सकती है।
6: So they might use it to control anxiety or to overcome depressed mood or grief or other, you know, emotional problems they might be experiencing. So if someone finds a way to manage painful emotional states through the use of social media, that can form something of a gateway for these other more intense addictions, intense substance use or gambling addictions to start to develop.
3: वे आगे कहते हैं कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया की पहुंच को सीमित करना एक बहुत ही स्वस्थ और सकारात्मक पहल है और इसके पीछे कई कारण हैं।
6: One is that it prevents some of these things to developing, you know, an addiction kind of developing. But I think the other kind of part is that social media exposes people to a range of really challenging and difficult media, including, you know, the capacity for abuse from other people, and that could be really damaging. But they could also see things that can be not developmentally appropriate that might be really painful and damaging to them.
3: Australia विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने सोशल मीडिया के इर्द-गिर्द न्यूनतम आयु के नियम लागू किए थे. इन नियमों का पालन ना करने पर या इनसे जुड़ी बाध्यताओं को पूरा ना करने पर और उनके लिए उचित कदम ना उठाए जाने पर फेडरल कोर्ट के पास सोशल मीडिया कंपनियों पर 49.5 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है. संचार मंत्री अनिका वेल्स का कहना है कि अनुपालन रिपोर्टिंग की यह व्यवस्था अभिभावकों को आश्वस्त करेगी और बड़ी टेक कंपनियों को चेतावनी भी देगी कि नियमों का पालन ना करने पर भारी जुर्माना लग सकता है.
5: Publishing the compliance report today, I think not just gives parents peace of mind that we understand what you're going through, but puts big tech on notice. Enforcement action has begun. We are building the evidence case and the e-safety commissioner can take you to court.
3: SBS News से ग्रेग डायट की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया प्रशाली जैन ने.
2: तो श्रोताओं, आप ये एक न्यूज़ सुन रहे थे, रिपोर्ट सुन रहे थे. और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि आज स्टूडियो में हमारे साथ एक मेहमान भी हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि कौन आया है स्टूडियो में, तो बिल्कुल अभी परिचय कराती हूँ, लेकिन क्यों ना पहले एक अंतराल लेते चले. तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद.
7: You know the feeling. That rush when you reach that goal, make somebody brag a little back home, that's success. And at University of Maryland Global Campus, we believe you should never stop chasing it. That's why UMGC offers an accredited skills-based education that helps move your career forward. We'll teach you how to apply emerging technologies like AI and data science, plus build your skills in leadership, communication, and critical thinking. Explore more than 135 degrees and certificates in business, cybersecurity, healthcare, and more. With affordable and online programs, you can unlock new opportunities to help you succeed again. At UMGC, success is yours for the taking and the making, and nothing should keep you from it, especially not an application fee. Apply now and we'll waive your application fee. Classes start May 13th. Learn more at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev.
8: SBS Audio.
9: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
10: यही चाहता लिया. चुनबै हाल में.
11: SBS Chill. Chill.
12: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
13: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
14: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
15: Far from the partisan politics.
16: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
17: sbs.com.au/audio.
2: SBS हिंदी पर मैं हूं आपके साथ अनीता बरार. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रही हूं और साथ में स्वागत कर रही हूं स्टूडियो में आई हमारी मेहमान. अब आप सब जानना चाहते हैं तो बताऊं कि स्टूडियो में आज जानी मानी साइकेट्रिस्ट जो सिडनी में हैं, डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी, वो हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ गई हैं. उनके साथ बातचीत तो करते ही चलेंगे. यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि आपको हमारा नंबर याद है ना, 04397997667. तो अगर आपके मन में कोई बात आ जाए कि आप ख़ास तौर से उनसे ही पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मुझे संदेश भेजेंगे. शैलजा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है कि आज आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं.
8: अनिता जी, आपने इतने सस्पेंस में रखा है श्रोताओं को कि आखिर में आपने मेरा नाम बताया है। श्रोताओं, आपका स्वागत है रेडियो SBS में। अनिता जी, आपका हार्दिक धन्यवाद है कि आपने मुझको ये सुअवसर दिया कि मैं आपके साथ SBS स्टूडियो में आऊं।
11: जी देखिए शैलजा जी, कि बहुत लंबे अरसे से हम चाहते थे कि कभी आप जब मेलबर्न आए तो हमसे मुलाकात करें, लेकिन वो कुछ बन नहीं रहा था। और देखिए अब आप मेलबर्न आई, लेकिन मेलबर्न आई हैं कोई खास वजह से।
8: जी,
11: वजह ये है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट, उनकी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस थी जिसको आप अटेंड कर रही थी।
8: जी,
11: और एक बहुत ही अलग से आपने जो बात बताई है और जो हम अपने श्रोताओं के साथ भी साझा करना चाहेंगे
8: जी,
11: कि इसमें भारतीय मूल के साइकेट्रिस्ट की एक लंबी बहुत बड़ी तादाद है।
8: यस,
11: कितने हैं?
8: जी हाँ,
11: जी
8: हाँ,
11: कितने हैं?
8: तो श्रोताओं, भारत के जितने भी हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम कुछ न कुछ ऐसा दिखाते हैं कि भारतीय जो हैं भले ही दूसरे देशों से अलग हों, लेकिन हमारी अपनी क्षमताएं हैं, हमारी अपनी विशेषताएं हैं, और इतना कुछ हम करते हैं कि जहाँ भी हम जाते हैं हम लोग वहाँ अपना भारत का झंडा ऊंचा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट का एक जो भाग है वो है ऑस्ट्रेलियन साइकियाट्रिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये जो अलग से है ये इसलिए है क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया में लार्जली हमारे भारतीय साइकियाट्रिस्ट के द्वारा रन करती हैं। अगर हम लोग यहाँ से विद्रॉ कर लेते हैं तो इनकी मेंटल हेल्थ सर्विसेज फेल हो जाएंगी।
11: अरे,
8: ये बहुत बड़ी बात है, मैंने कह दी है, लेकिन ये सच्ची बात है। अब ये सोचिए कि सारे साइकियाट्रिस्ट जो हैं ऑस्ट्रेलिया भर में वो मेंबर नहीं हैं ऑस्ट्रेलियन साइकियाट्रिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन के, लेकिन फिर भी हमारी जो मेंबरशिप है 600 हैं, और अभी 600 और भी ऐसे हैं जो कि मेंबर नहीं हैं। और दूसरी बात,
11: क्योंकि कई वो लोग भी होंगे जो शायद भारतीय मूल के, मतलब फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन के हैं, तो शायद वो इसलिए भी ऐसा,
8: बिल्कुल इसमें उनकी गिनती नहीं है। जैसे कि हमारे बच्चे जो हैं या जिनका जन्म यहाँ हुआ है या जिनकी डिग्री यहाँ से लिए, उनको अगर हम मिला लें तो पूरी ऑस्ट्रेलिया में मेंटल हेल्थ जो है वो सारी इंडियंस के अंडर है।
11: तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये एक बड़ा सकारात्मक बात है कि हम कल्चरली सांस्कृतिक तौर पर भी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके बारे में समझते भी हैं।
8: जी हाँ,
11: और अपनी ही लोगों द्वारा अगर किसी तरह की सहायता मिल रही है तो हमें थोड़ा आत्मविश्वास भी आता है और थोड़ा सा तसल्ली होती है कि अच्छा, हम अपनी भाषा में, मिली जुली भाषा में, ज़रूरी नहीं है कि सभी हिंदी भाषी हैं, लेकिन फिर भी एक अपनत्व की भावना आ जाती है और हम फिर उनसे ज़रा सहज हो जाते हैं, खुल के बात कर लेते हैं।
8: बिल्कुल
11: जी, तो ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा आशामय भविष्य है जो मानसिक स्वास्थ्य की उतनी समस्या नहीं आएगी जितनी कि बाहर दूसरे देशों में आ रही है।
8: जी हाँ,
11: कुछ ऐसा लगता है आपको?
8: बिल्कुल मुझे लगता है। और देखिए अनिता जी, कि अब अभी जो हमें कल ही पता लगा था कि भारत में जो लोग जन्मे हैं उनकी संख्या ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक है। अब अगर अधिक इतनी संख्या है तो मान लीजिए कि मुझे कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, तो मेरा मन ये होगा कि मैं किसी से अपनी भाषा में बात करूं जो समझता हो, मेरी सिचुएशन, मेरी पोजीशन समझता हो, मेरे भावों को समझता हो, बजाय इसके कि मैं किसी वेस्टर्न साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊं जो कि बिल्कुल जिसको ज्ञान नहीं है कि हमारी संस्कृति, हमारे परंपराएं क्या हैं। तो इसलिए बढ़ती हुई यहाँ की जो संख्या है भारतीयों की, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने ही देश के किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करें। लेकिन मेंटल हेल्थ हम लोग सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं करते, हम लोग जो हैं मेंटल हेल्थ सारे ऑस्ट्रेलिया में प्रोवाइड
11: करते हैं। वो तो बात है कि खाली आप किसी समुदाय खास के लिए नहीं होता है, ये तो एक समस्या है जो किसी को भी किसी समय हो सकती है। जैसे अभी देखिए कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया प्रतिबंध की, तो जो हमारा युवा वर्ग है वो इस समस्या से जूझने लग गया।
8: बिल्कुल।
11: और कई बार क्या होता है कि क्या आपने ये महसूस किया है कि जब हम किसी तनाव में होते हैं, या तो हम खाने बहुत लग जाते हैं
17: जी,
11: या फिर हम नहीं खाते
17: जी हाँ।
11: और अगर खाने का शौक हो तो हम क्या खाना चाहते हैं,
17: बिल्कुल
11: मीठे की तरफ हमारा ध्यान जाता है,
17: बिल्कुल बिल्कुल। और इस बात को हम समझा सकते हैं बीइंग एन इंडियन, हम समझा सकते हैं पेरेंट्स को कि क्यों हम इसके लिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप बच्चों को सोशल मीडिया में अलाउ न कीजिए, या बच्चों को चॉकलेट जैसी चीज़ें जो हैं वो खाने से बचाएं। तो हमारा जो प्रभाव है वो पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा बनिस्बत इसके कि कोई ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस वो सोचते हैं वो समझते नहीं
11: है। आपने शैलजा जी चॉकलेट की बात की है तो मुझे
17: आपकी वीकनेस है
11: कि चॉकलेट जो है ना वो किसको पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, आमतौर पर हम सोचते हैं कि चॉकलेट कहाँ से आई होगी, स्विट्जरलैंड से आई होगी या ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि बचपन में पढ़ा ही था कि दूध की नदियाँ बहती हैं तो चॉकलेट भी वहीं से आएगी,
17: वहीं आई होगी।
11: लेकिन देखिए चॉकलेट भारत में भी आती है। कहाँ से आती है? ऊटी से आती है।
17: सच में?
11: जी। तो बातचीत आप, क्योंकि आप ही ने चॉकलेट की बात कर दी है तो अब चॉकलेट की बात पे ये तो जानना ही पड़ेगा कि भारत में कहाँ पर है चॉकलेट।
17: ये तो मुझे किसी, बहुत कम लोगों को पता होगा कि चॉकलेट जो है वो भारत की देन है।
11: तो नहीं, देन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है कि भारत से कोई चॉकलेट बनी हुई आपने कभी खाई हो। तो आइए ये रिपोर्ट सुनते हैं। इसको भी हमारे जो श्रोता हैं वो पहले सुन चुके हैं, लेकिन अभी चूंकि आपने बातों बातों में चॉकलेट की बात की तो मुझे लगा कि ये रिपोर्ट को हम दोबारा सुन लेते हैं।
17: बिल्कुल।
11: और इसको हमारे जो संवाददाता हैं
17: जी,
11: जो भेजते हैं रिपोर्ट को तैयार करके, वो आपके ही जन्म स्थान से आते हैं, यानी लखनऊ से आते हैं।
17: ये तो और भी सुनिए।
11: तो आज लखनऊ चॉकलेट और आपका हमारे साथ आना, तो आइए पहले हम ये रिपोर्ट सुनते हैं, फैसल फरीद की ये रिपोर्ट जो हमारे लिए उन्होंने भेजी है।
18: चॉकलेट एक ऐसी मीठी और स्वादिष्ट चीज़ है जो हर उम्र के लोगों द्वारा पसंद की जाती है। इसका इतिहास बहुत पुराना है और इसे दुनिया भर में कई प्रकार से बनाया और खाया जाता है। चॉकलेट कोको से बनता है जो कोको के पेड़ों के बीजों से प्राप्त होता है। चॉकलेट की शुरुआत लगभग 4000 साल पहले मध्य और दक्षिण अमेरिका की सभ्यताओं में हुई मानी जाती है। शुरुआत में चॉकलेट मीठा नहीं बल्कि कड़वा होता था और इसे मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता था। आजकल चॉकलेट के कई प्रकार बाजारों में उपलब्ध हैं, जैसे डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में कोको की मात्रा अधिक होती है, जबकि मिल्क चॉकलेट में कोको के साथ दूध और शक्कर भी मिलाए जाते हैं। वाइट चॉकलेट में कोको सॉलिड्स नहीं होते, बल्कि इसमें केवल कोको बटर, दूध और शक्कर मिलाए जाते हैं। भारत में तमिलनाडु में ऊटी हिल स्टेशन बहुत प्रसिद्ध है। जब ब्रिटिश काल में बहुत से अंग्रेज ऊटी में रहने लगे तो उन्होंने स्थानीय लोगों को चॉकलेट बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। भारत में भी चॉकलेट का उत्पादन और लोकप्रियता 19वीं सदी में बढ़ने लगी। ब्रिटिशर्स जब ऊटी और अन्य हिल स्टेशनों पर रहने लगे तो चॉकलेट उद्योग के रूप में ऊटी को विशेष रूप से बढ़ावा मिला, क्योंकि ऊटी का ठंडा और नमी वाला मौसम चॉकलेट बनाने और उसको संग्रहित करने के लिए एकदम सही है। 20वीं सदी में ऊटी में कई छोटे और बड़े चॉकलेट निर्माण इकाइयां स्थापित हुईं, जो आज इस क्षेत्र की पहचान बन चुकी हैं। ऊटी में कई छोटे और बड़े लेवल के चॉकलेट कारखाने हैं जो विभिन्न प्रकार के चॉकलेट बनाते हैं। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए ये एक प्रमुख आकर्षण भी है। पर्यटक यहाँ की चॉकलेट फैक्ट्रियों का दौरा करते हैं और ताजगी भरी हाथ से बनी चॉकलेट खरीदते हैं। आज आपको मिलवाते हैं सेल्वम जी से, जो ऊटी में पिछले 3 पीढ़ी से चॉकलेट बना रहे हैं। इनके दादाजी को ब्रिटिशर्स ने चॉकलेट बनानी सिखाई थी और फिर 1947 में इनके दादाजी ने अपनी चॉकलेट की शॉप खोली। आज अंग्रेजों द्वारा सिखाई गई विधि से सेल्वम जी चॉकलेट बना रहे हैं। अब वो तरह तरह की चॉकलेट बनाते हैं जो उनके ग्राहकों, पर्यटकों में बहुत पसंद की जाती है। यही नहीं, लोग इनके पास चॉकलेट लेने कई कई बार आते हैं। सेल्वम जी को हिंदी नहीं आती है, लेकिन चॉकलेट की मिठास उनकी भाषा में घुली हुई है, वे बताते हैं।
19: It is about that generation I am doing this business. This was started by my grandfather in 1947, who was a chocolate maker for the British people. The white people before leaving India, they made stuff for my grandfather in 1947 inside the Ooty market. So our journey starts from there. I am that gentleman doing his business in Ooty. This I mean, whereas the British people teach to my grandfather, and it is a family-oriented business. See, actually, in Ooty, we are not growing cocoa plant here, but we're growing very small quantum, okay? We are buying cocoa powder and we make. Why Ooty chocolate is famous, no? Ooty was found by the British people. British people found Ooty, they can live before independence. They can live in Ooty. They normally fond of chocolate. They bring cocoa plant from their country, plant it here, and teach our people to how to make chocolate. And my grandfather, they did this. The British people make chocolate. They supply to the about 100 families are living in British those days. So they can supply to the under family. So that's what the thing is created.
18: Ooty के चॉकलेट उद्योग में दूध चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, नट्स वाली चॉकलेट, ट्रफल्स और अनफ्यूजन चॉकलेट की बड़ी मांग है। ऊटी की चॉकलेट अपनी गुणवत्ता और विशिष्ट स्वाद के लिए जानी जाती है। यही नहीं, एक चॉकलेट सेल्वम जी ऐसी बनाते हैं जो मिर्च का स्वाद लिए होती है, जिसे चिली चॉकलेट कहते हैं। ये चॉकलेट लोग एक दूसरे के लिए भी लेते हैं। 7 दशक बीत गए, लेकिन सेल्वम जी की चॉकलेट का स्वाद अभी भी वैसे ही कायम है।
19: We have 208 varieties of chocolates. In that category, we have about fudges, that European fudges we make. In fudge, we have about 32 varieties. And almost we have 208 varieties in filling varieties and rock chocolate and dip chocolate. So these dip chocolate are very famous. And the fudges, we have doing rich plum fudge. That is one of the rich plum cake taste. This is a European style. That is one of the fast moving fudges. Yes, we have we sell that chili chocolate and the imli chocolate and chili filling chocolate. The chili filling is one of the most hot spice chocolate. So that the chocolate most probably the college students are buying for making fun with others. So that is one of the best. I mean.
18: देश विदेश से लोग आज सेल्वम की शॉप पर आते हैं। कई बड़े उद्योगपति भी इनके चॉकलेट के फैन हैं। सेल्वम जी आज तक अपनी चॉकलेट की महक और पहचान बरकरार रखे हैं। आप भी जब ऊटी जाएं तो सेल्वम जी की चॉकलेट जरूर टेस्ट करें।
19: Yes, actually my regular customers were maybe the second generation people visiting to us or third generation people visiting to us like that. And I mean we have about the tourists from all over the country. They visit our shops. Last year, some of our customer came here. He is related to Mr. Mukesh Ambani. So they like our chalk fudges and they take some fudges from me. They came to here and they take fudge for him.
18: Ooty का चॉकलेट उद्योग न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है, बल्कि भारतीय चॉकलेट उद्योग में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऊटी की चॉकलेट अपनी गुणवत्ता, विविधता और अनोखे स्वाद के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुकी है। भविष्य में यह उद्योग और भी बढ़ने की संभावना है, जिससे ऊटी की पहचान और भी मजबूत होगी। लखनऊ से फैसल फरीद।
11: तो देखिए शैलजा जी, ऊटी की चॉकलेट। और हमारे एक श्रोता ने, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा है कि बेंगलुरु में ऊटी चॉकलेट रोड भी है एक।
17: तो क्या कैडबरीज चॉकलेट स्विट्जरलैंड से नहीं आती हैं, ऊटी से आती हैं आप कह रहे हैं?
11: नहीं नहीं, वो ऊटी में तो वो अपनी बनाएंगे,
17: अपनी बनाई
11: है जी, उनका अपना पूरा बना हुआ है। जैसे कि अभी फैसल फरीद जी बता रहे थे कि सेल्वम जी जो हैं वो उनकी तीन पीढ़ी है जो चॉकलेट बना रही हैं। तो भारत की चॉकलेट का भी एक अलग मुकाम बनेगा, जैसे वो पॉपुलर है ही। अच्छा, यहाँ पर चूँकि हम बात कर रहे थे शैलजा जी, आप सिडनी से आई हैं और सिडनी से ही हमारे एक श्रोता हैं चेतन शाह जी।
17: जी हाँ, उनका स्वागत है SBS में।
11: जी, तो अब वो एक बात पूछना चाहते हैं। हम खाली ऐसे ही बात कर रहे हैं, कोई मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कोई बहुत गंभीर चर्चा आज हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक चर्चा हम आपके साथ करेंगे
17: जी।
11: उन्होंने वैसे ही आपसे सलाह ये जानना चाहिए है कि कई बार क्या होता है कि हमारा अपना एक अनुभव होता है
17: जी
11: बच्चों के प्रति, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके अपने घर बन गए हैं, अब उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा ली है, लेकिन हम एज ए पेरेंट कई बार होता है कि हम देख रहे हैं कि शायद वो गलत कर रहे हैं, तो एक उनको सलाह दे दी
17: बिल्कुल,
11: या उनसे बातचीत करके उनको कितना मतलब कितनी दूरी रखनी चाहिए उनकी उनके जीवन के साथ में जुड़ी बातों से अपनी, क्या बहुत ज्यादा सलाह देना चाहिए कहीं उनको ये ना लगे कि ये दखल अंदाजी हो रही है, कुछ इस तरह का, क्या आपको क्या लगता है?
17: चेतन जी आपका स्वागत है, और आपने तो बड़ा ही कठिन प्रश्न पूछा है, क्योंकि पेरेंटिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, हम सब बनते हैं पेरेंट्स, और ये हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा चुनौती वाला काम है और सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग संतुष्टि देने वाला काम है कि आप एक नई जनरेशन को आप सामने ला रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोल मॉडलिंग और फैमिली के वातावरण का इतना प्रभाव पड़ता है बच्चे के कैरेक्टर पर कि जो कुछ आपकी फैमिली में होता है वही विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द चाइल्ड ये उसमें उसके पर्सनैलिटी में चलता चला जाता है, उसके पर्सनैलिटी को बनाता है। तो ना तो बच्चे को पता है ना आपको पता है कि किस तरह से आपके रोज़मर्रा के जो विचार हैं, आपके जो वैल्यूज़ हैं, वो किस तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं बच्चे की पर्सनैलिटी में। तो आपको एक तो है रोल मॉडलिंग बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप चाहते हैं, जैसे बच्चे को बड़ा होना चाहते हैं तो आप रोल मॉडलिंग कीजिए, और रोल मॉडलिंग में बच्चा देखेगा कि हाँ ये फैमिली का रोल है, और बच्चों को और आपको इनकरेज करना होगा कि जो हमारी फैमिली के रूल्स हैं उन रूलों के अंदर वो रहें। अब आजकल मुश्किल ये है कि बच्चे जो हैं हम लोगों से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो उनकी है वो हमसे ज़्यादा है। तो इसको भी ध्यान रखते हुए आपको यही करना होगा कि बच्चे जो हैं आपको ओवरटेक न करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही जीवन में सिर्फ एक चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका आपकी पर्सनालिटी और आपका चरित्र। तो उसको बनाने के लिए आपको बच्चों को ये भी सिखाना होगा कि जिस तरह से नियम होते हैं, परिवार का नियम है, देश का नियम है, या अपने जहाँ भी स्कूल का नियम है, जो कुछ भी है उसको नियम का पालन करना है। तो अगर सोशल मीडिया मान लीजिए आ जाता है या आ गया है अब, तो बच्चों को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि ये किसी ने बनाया है नियम, जैसे कि गाड़ी में है कि आप इस स्पीड से चलाइए, या पी प्लेट है या एल प्लेट है, तो आपको मानना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि रोल मॉडलिंग जो है कि फैमिली फॉलो अप करती है कि जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो अप करती है। दूसरा ये है कि आप फ़ोन पर बैठे हुए हैं और आप बच्चों से कह रहे हैं कि फ़ोन पर ना बैठो, तो सबसे पहले तो आपको अपना कंट्रोल करना पड़ेगा।
11: देखिए बच्चों के साथ तो फिर भी एक माँ बाप की जो जिम्मेदारी होती है वो है, लेकिन कई बार क्या है कि जब बच्चे बड़े हो गए हैं और बच्चे खुद माँ बाप बन गए हैं
17: जी हाँ,
11: तब आपको कितना उनके साथ, तब आपको उनकी लाइफ में क्या इंटरफेयर करना चाहिए, जिम्मेदारी को कितनी आगे तक ले जाना है, ये शायद स्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि आप कहते हैं ना कि देखकर तो मक्खी भी नहीं निगली जाती,
17: बिल्कुल,
11: लेकिन ये भी बात नहीं है कि आप उसको नज़रअंदाज करें,
17: बिल्कुल।
11: मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही सहजता के साथ में अपने उस रोल को निभाते हुए
17: जी,
11: ताकि उनका दिल भी ना दुखे, और अपना अनुभव उनके साथ साझा करते रहना चाहिए। उससे ये फायदा होता है कि वो उसी समय शायद ना समझें आपकी बात, लेकिन वो जब देखेंगे समझेंगे कुछ देर के बाद में, कुछ कुछ घंटों के बाद में, हो सकता है कुछ दिनों के बाद में, वो उसको एनालाइज कर सकते हैं कि अगर ऐसी बात कही है तो उसका असर क्या रहेगा। और परिस्थिति पर बहुत निर्भर करता है कि किन परिस्थितियों में आपका जो दूसरा परिवार है, जो आप खुद अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है
17: जी हाँ,
11: वो किन परिस्थितियों में है
17: जी,
11: तो उसके हिसाब से वो, वही जैसे आपने कहा ना कि कोई रूल बुक नहीं होती है
17: जी,
11: ये सबका अपना अपना अनुभव होता है।
17: बिल्कुल बिल्कुल।
11: तो एक बड़ा ही गंभीर सी बात चेतन जी आपने पूछ ली थी, जिससे हम सबको ऐसे लगने लग गया कि इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा की आवश्यकता है, लेकिन उस चर्चा से आगे हम चर्चा भी करते चलेंगे
17: जी हाँ।
11: क्यों ना एक छोटा सा अंतराल लेते हैं
17: जी हाँ,
11: और आज शनिवार का दिन है तो लोग शायद
17: इत्मीनान से आप काम कर रहे हैं तो चेतन जी फैमिली डिस्कशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि फॉर एंड अगेंस्ट, और आप बच्चों को देखिए उनसे भी भी पूछिए कि उनका क्या ख्याल है कि अगर सोशल मीडिया आ रहा है एज अ रूल तो वो क्या सोचते हैं, तो उनके भी आप ओपिनियन लीजिए, उनके भी व्यूज़ आप लीजिए उस चर्चा में
11: जी। और हमारे जो श्रोता जिन्होंने चॉकलेट के बारे में अपनी ऊटी चॉकलेट रोड के बारे में बताया था, उन्होंने वापस बताया है कि वो बहुत करीब से जानते हैं उस रोड को, और वो श्रोता कुमार जी हैं, तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर। और चलिए एक अंतराल लेते हैं और फिर
17: बिल्कुल और आपने इतना टेम्प्टिंग कर दिया है,
11: फिर कुछ और बातें करेंगे जी।
20: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
21: One more, let's go.
20: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
22: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
23: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
24: 3 employees and 2 work trucks.
23: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
24: They sure are.
23: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
24: Shockingly low, huh?
23: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
24: I got it.
23: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
25: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
26: Starting a new life in Australia isn't easy.
27: A lot of companies have rejected me.
28: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
26: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
29: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
30: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए, ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर, हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
11: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। शैलजा जी, आपके साथ हम बातें करते जा रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी कुछ चर्चा हो रही है, हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए ये भी इसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। अपने श्रोताओं को ये भी याद दिला दूं कि हमारा नंबर है 04397997667। कोई सवाल अगर उनके मन में आ रहा है इस छोटे से समय के में कुछ पूछने के लिए, तो हम वो भी कोशिश करेंगे
17: जी।
11: और हमारे एक श्रोता हैं राजेंद्र वोहरा जी, वो पुराने गाने सुनना चाहते हैं।
17: वाह,
11: कभी कभी आप भी मुझे कहती हैं कि पुराने वाले गाने बजाएं, तो उन्होंने पिछले सप्ताह मेरे से एक गाना सुनवाने की उन्होंने कहा था, तो वो गाना उस समय तो नहीं मिला। तो वो गाना है फिल्म बाबुल का, और गायक हैं तलत महमूद, शमशाद बेगम और रफ़ी साहब।
17: ये तो आपने इतनी कमाल की बात कर दी, तलत महमूद, शमशाद बेगम और बाबुल
11: जी। तो मुझे पता है आपको भी पसंद है,
17: बिल्कुल,
11: क्यों ना आज वो गाना सुनते चलें।

0: जी श्याम सुहानी ही आई है और देखिए गाना कितना खूबसूरत था। शैलजा जी
1: क्या मखमली आवाज है तलत महमूद की, और तलत महमूद भी लखनऊ के थे, ये बड़ी नजाकत की बात
0: आज तो
1: है।
0: बहुत बहुत कुछ
1: यस, बहुत
2: खूबसूरत गाना था
0: जी, बहुत ही खूबसूरत गाना था। और आप अभी बता रही थी कि तलत साहब भी जो लखनऊ के थे, तो क्या आज संयोग बना है। चलिए लखनऊ से बॉम्बे की तरफ चलते हैं, मुंबई चलते हैं, बॉलीवुड
2: चलिए
0: की दुनिया में, और जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है।
3: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम बॉलीवुड टाइम में आपका स्वागत है, मैं हूं नेहा। बॉलीवुड टाइम में सबसे पहले बात करते हैं फिल्म डुक डुक की। फिल्म डुक डुक का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये एक सटायर और कॉमेडी फिल्म है। ट्रेलर की शुरुआत एक एक्सीडेंट से होती है जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो जाती है। बाइक को पुलिस वाले एक जगह खड़ा कर देते हैं, लेकिन वो बाइक पहली वाली लोकेशन पर चली जाती है। इस बाइक को ही गाँव वाले पूजने लगते हैं। इस कहानी को कॉमेडी और सटायर अंदाज में डायरेक्टर ने लिखा है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। फिल्म डुक डुक सिनेमा घरों में 8 मई 2026 को रिलीज होगी। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बनी उनके बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी स्टारर फिल्म एक दिन एक मई को रिलीज हो गई है। मुंबई में फिल्म का म्यूजिकल इवेंट रखा गया था। म्यूजिकल इवेंट में आमिर खान ने एक्ट्रेस साई पल्लवी और बेटे जुनैद खान के साथ बैठकर फिल्म देखी। इस बीच आमिर खान काफी भावुक नजर आए। एक हिस्से में गाना देखकर आमिर रो पड़े और वहीं बैठे बैठे अपनी टी शर्ट से आंसू पोंछते नजर आए। फिल्म दादी की शादी का एक नया रोमांटिक सॉन्ग सुनो ना दिल रिलीज कर दिया है। गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने मिलकर गाया है। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म 8 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
4: सुनो ना दिल, ये दिल लाया है, तेरी खिदमत में आया है।
3: प्रियंका चोपड़ा मीरा नायर के अपकमिंग बायोपिक ड्रामा अमृता शेरगिल में एक स्पेशल रोल निभाते हुए नजर आ सकती है। इस बायोपिक में मीरा नायर पेंटर अमृता शेरगिल की जिंदगी से जुड़ी अहम चीजों के बारे में दिखाएंगी, जो हंगरी, इंडिया और फ्रांस जैसे शहरों के आसपास घूमती है। इस बायोपिक में इस स्पेशल पार्ट के लिए मीरा ने प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया है। खबरों के मुताबिक प्रियंका ने इस कैमियो के लिए पिछले हफ्ते शूटिंग भी पूरी कर ली है। इसके बाद वो अमृतसर गई और 2 दिनों की शूटिंग की। निर्देशक रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल 5वीं फ्रेंचाइजी के साथ पर्दे पर वापसी कर रही है। फिल्म की शूटिंग इस वक्त ऊटी में चल रही है, जिसमें अजय देवगन समेत शर्मन जोशी, अर्शद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू शर्मन और श्रेयस तलपड़े भी नजर आ रहे हैं। निर्देशक रोहित शेट्टी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर किया। 20 साल से पॉजिटिव वाइब से गुजर रहे हैं गोलमाल 5 ऊटी शेड्यूल। अभिनेत्री पलक तिवारी वेब सीरीज लुक्खे के जरिए ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। सीरीज का नया गाना जी लेंगे रिलीज हो गया है। सीरीज अमेज़न प्राइम पर 8 मई से स्ट्रीम हो रही है।
4: कब तक तू ना देखे मुझे रोते हुए, चलो कोशिश तो हुई, बाकी हम जी लेंगे।
3: फिल्म बंदर के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। ये फिल्म 5 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए एकदम तैयार है। इस फिल्म में बॉबी देओल लीड रोल में है। बॉबी देओल इस इंटेंस ड्रामा में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म केडी का गाना सर के चुनर काफी विवादों में रहा है। इसके सीन्स और लिरिक्स पर लोगों ने विरोध जताया। मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संजय दत्त को समन जारी किया था। संजय दत्त विवाद से जुड़ी सुनवाई में शामिल होने के लिए दिल्ली के जसोला स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंचे। संजय दत्त राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश हुए। उन्होंने आयोग के सामने कहा कि उन्हें गाने के आपत्तिजनक शब्दों की जानकारी नहीं थी, ये गाना किसी और भाषा में रिकॉर्ड किया गया था। फिल्म पति पत्नी और वो दो के मेकर्स ने गाना रूप दीरानी रिलीज कर दिया है। ये एक देसी मस्ती भरा और अपबीट ट्रैक है। फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।

गवर्नर द साइलेंट सेवियर के मेकर्स ने फिल्म के कुछ नए पोस्टर शेयर किए। इन पोस्टर्स में मनोज बाजपेयी गवर्नर के गंभीर किरदार में नजर आ रहे हैं। उनके कंधों पर देश को एक बड़े आर्थिक संकट से बचाने की जिम्मेदारी भी है। मेकर्स ने इस बार सिर्फ मनोज ही नहीं बल्कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस अदा शर्मा का भी पोस्टर शेयर किया है। इसमें वो एक आम शादीशुदा महिला के किरदार में नजर आ रही है। ये फिल्म

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not so motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: मान एक आम आदमी की भूमिका निभा रहे हैं जो अचानक एक खतरनाक और मुश्किल स्थिति में फंस जाता है। फिल्म वाराणसी की एक खास झलक कॉमिक कॉन मैक्सिको 2026 में दिखाई गई। इस इवेंट में फिल्म के सेट के पीछे के कुछ ऐसे फोटोज भी दिखाए गए जो पहले कभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। पहले भी फिल्म वाराणसी की खास झलक फ्रांस के प्रसिद्ध थिएटर ले ग्रैंड रेक्स में ट्रेलर फेस्टिवल में दिखाई गई थी, जहां दर्शकों ने बहुत जोरदार तालियां और सीटियां बजाकर इसका स्वागत किया था। फिल्म वाराणसी में महेश बाबू रुद्र का किरदार निभा रहे हैं। वाराणसी 7 अप्रैल 2027 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म मैं वापस आऊंगा के सॉन्ग क्या कमाल है का ऑडियो जारी कर दिया गया है। इस गाने को दिलजीत दोसांझ ने आवाज दी है, जबकि इसका संगीत यार रहमान ने तैयार किया है और इरशाद कामिल ने इसके बोल लिखे हैं। फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है।
6: ना कोई जुदा ना गुमशुदा है यहाँ क्या कमाल है।
5: अक्षय कुमार ने विद्या बालन के साथ अपनी चौथी फिल्म की घोषणा करते हुए इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो शेयर किया है। वीडियो में अक्षय और विद्या साथ में फ्लाइट में चढ़ते दिखाई दिए। इसके साथ ही अक्षय ने बताया कि वो अपनी इस फिल्म की शूटिंग के शुरुआती शेड्यूल के लिए केरल जा रहे हैं। अक्षय कुमार ने लिखा, अगला पड़ाव भगवान का अपना देश जादुई केरल। अक्षय ने आगे लिखा, मुझे उम्मीद है कि हमारी जोड़ी का गुड लक चार्म बना रहेगा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे के छात्र मेहर मल्होत्रा द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म शेडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स को 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सिनेफ सेक्शन के लिए चुना गया है। ये शॉर्ट फिल्म दुनिया भर के फिल्म स्कूलों से प्राप्त 2750 प्रविष्टियों में से चुनी गई चुनिंदा फिल्मों में से एक है। फिल्म कृष्णावतारम का पहला गाना प्रेम की लीला रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है। ये गाना सिर्फ एक म्यूजिकल ट्रैक नहीं बल्कि फिल्म की आत्मा की पहली झलक है। फिल्म 7 मई 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगी।

0: बॉलीवुड टाइम में आज बस इतना ही, बाय बाय।
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है। जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें। अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
5: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार। और स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं शैलजा चतुर्वेदी जी, जो जानी मानी साइकेट्रिस्ट हैं। उनके साथ में हमने काफ़ी बातें भी कर ली। शैलजा जी, हम लखनऊ की बात कर रहे हैं और आप लखनऊ से हैं
6: जी।
5: उससे पहले भी हमने लखनऊ की बात की, तो एक गाना सुनते हैं
6: जी,
5: जिसकी

0: शूटिंग लखनऊ में हुई थी
1: जी।
0: मैं आप अभी बता रही थी मुझे कि फिल्म उमराव जान की शूटिंग कहाँ पर हुई थी
1: जी।
0: तो उमराव जान का गाना तो नहीं लेकिन ये दूसरा गाना आप सुनिए
1: ठीक।

0: तो ये गाना तो हमने सुना जिसकी शूटिंग लखनऊ में हुई थी, और आज क्योंकि ऊटी की चॉकलेट की बात हुई है तो क्यों ना एक गाना वो सुनते चलें शैलजा जी, जिसमें जहाँ शूटिंग ऊटी में हुई है। गाना सबको याद ही होगा
1: बिल्कुल
0: कौन सा है जी, और अच्छा भी सबको आता है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का समय भी लगभग समाप्त होने को आया है। इसी लाइव रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपको छोड़ते हुए जा रही हूँ। किसी इवेंट पे ये लाइव प्रोग्राम चल रहा था। शैलजा जी, आज आप हमारे साथ शामिल हुई हैं कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लगा है। इसी तरह से फिर कभी आपसे मुलाकात होगी।
1: हार्दिक धन्यवाद अनीता जी आपको मुझे शामिल करने के लिए।
0: जी, और आपसे लंबी बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। अभी अपने सब दोनों सभी श्रोताओं से बस इजाज़त लेते हैं। तो आप सभी को अनीता बरार का नमस्कार।
1: नमस्कार, शुभकामनाएं आपको।

Rico. Hit. After hit. After hit. This is SBS South Asian.

0: Nights on SBS South Asian.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

बच्चन बच्चन बच्चन पांडे।

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खबा खबा।

Yo-Yo Honey Singer. चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो, पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा या

0: Desi Dance Party on SBS South Asian.
1: Let's go crazy.

0: South Asian.
1: Your news from here and hits from home.

party tune, Desi Dance Party on SBS South Asian. लचके जब कमरिया हसारा जिला ही लूं।

तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख इश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद हो ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद हैं।

Dikiro.

0: step up to
1: dancing foreign style.
2: Slow down, boys.

से देखता है मैं गलत हूँ तू सही, देख मेरी नजरों से गलत में कुछ गलत नहीं, करना है जो करके ही रहूंगा मैंने तय किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया।

इख्तियार जैसी होशियारी ये फिजूल है, तेरा ख्याल ठेकेदार है तू वक्त का, बदल के रहता है ये वक्त का उसूल है। हरकतों पे कब तलक मेरी नजर रखेगा तू, करते करते पहरेदारी एक दिन थकेगा तू। मैं मगर नहीं थकूंगा, फैसला ये है किया गलत को भी सही तरह से करने।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay, 'cause I want you to stay, 'cause I want you to stay.

दिल हर दिया। Oh yeah, baby.

0: Download the SBS audio app and discover something new. Get the latest news and current affairs in over 60 languages. Find your next favorite podcast or listen to one of our 7 radio stations. There is something for everyone with the SBS audio app. Grab it from your app store.
1: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।
2: Ayo, G-Funk.